0: क्या कहा थे
1: को FM
2: हाँ फकतहाकी
3: ए को हवाई की काई के नहीं
2: के नहीं है फकतहाकी में ते काई का फकहांगा या तू ते काई की ना काई माओरी और ते हाउ काइंगा और हवाई O te rā me ki ngā mihi mutu ngā kore ki ngā ringa wera.
3: E, ko Hawaii ki kai tēnei.
0: Ia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.